So, हम लोग आ गए हैं वापस एंड नॉट अ बैड सॉन्ग. आई लाइक्ड इट. मतलब मैं इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट वॉज अ गुड सॉन्ग. एंड सम हाउ मैंने अभी तक ये शो बिल्कुल भी नहीं देखा था, और आप लोगों के साथ ही अभी मैं देख रही हूँ. और मैंने अभी क्योंकि मैंने ऑडियो वीडियो लगाई हुई थी, तो मैं उसमें उसकी एक्टिंग भी देख रही थी. व्हाट्स हिज नेम, सम पांडा, आहान, आहान पांडा. एंड इट वॉज गुड. ही इज़ एक्टिंग ऑल्सो वेल. सो लेट्स सी. That's the thing about star kids. Actually, जब आप इंडस्ट्री से हो तो फिर आपको इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, और अगर यू आर अ गुड एक्टर तो एकदम से ज़िंदगी यू नो रणबीर कपूर जैसी हो जाती है और आलिया जैसी हो जाती है. सो दैट्स द थिंग अबाउट नेपो किड्स. लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब छोटी थी तो मैं उस वक्त से हमेशा से यही सुन रही हूँ कि मेरी अम्मा क्या करती हैं कि लोहार का बेटा लोहार और सुनार का बेटा सुनार होता है. तो मतलब वही वाली चीज़ है, बिकॉज़ वो लोग एक्टर्स हैं तो उनको वो वाली फील्ड में काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं. ओह अच्छा, मैंने एकदम से उर्दू में स्विच कर दिया. मुझे बिल्कुल, आप लोग आ गए हैं वापस और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस, और मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं हुआ कि मैं एकदम से उर्दू में स्विच हो गई हूँ. दैट्स अ थिंग अबाउट मल्टी लिंगुअल लोगों के, कि आप एकदम से लैंग्वेज स्किप कर देते, स्विच कर देते, और आपको खुद को समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है. तो हम लोग बात कर रहे थे मूवी के बारे में, और मुझे सही लग रहा है, गाना देखकर तो सब कुछ सही लग रहा है. अब लेट्स सी कि होता क्या है एक्चुअली. और इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे उन चीज़ों के बारे में जो अभी प्रेजेंटली चल रही थी, पाकिस्तान में बहुत एक्टिव थी. जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और उस चीज़ के बारे में मैं दोबारा बात में आई थिंक मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँगी. और जो पैलेस्टाइन में हो रहा है उसके बारे में भी आई थिंक आई एम नॉट इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि हम उसके बारे में बात कर सकेंगे. तो लेट्स स्विच टू द टॉपिक जिसके बारे में हम ईजिली बात कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ थी. मेरे बच्चे जो हैं वो अभी एकदम थोड़े से, मतलब वो ऑब्वियसली थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको क्रिकेट के बारे में पता चला है, और उनको वो जो एक क्रिकेट का क्रेज़ जो मुझे उनकी उम्र में होता था वही वाला क्रेज़ अब उनको भी है. और वो रातें जाग जाग कर और सुबह को उठ उठ के मैचेस देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, हाईलाइट्स देखते हैं. तो it was interesting to see. It's like obviously the apple doesn't fall far away from its tree. तो वो वाला सीन है. मेरे बच्चे जो हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से मैं हुआ करती थी क्रिकेट के बारे में. Kind of crazy, yeah. But yeah. So बांग्लादेश के मैचेस की सीरीज़ हम लोग आ गए बहुत बुरी तरह से. फिर अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हो रही थी, सब कुछ T20 चल रहा है, बट वेस्ट इंडीज़ के जो T20 सीरीज़ थी उसमें एटलीस्ट दे वर परफॉर्मिंग अ बिट. तो दे वन द सीरीज़ विच वॉज अचंभे की बात, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. इसी के साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के भी टेस्ट मैचेस चल रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोइंग अप इज़ व्हेन यू नो दैट आपको टेस्ट मैचेस अच्छे लगने लग जाते हैं. तो आई रिमेंबर व्हेन आई ग्रो अप अ बिट, और वो एक मेजॉरिटी की तरफ बंदा जा रहा होता है, तो उस टाइम पर आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, टेस्ट मैचेस तो बहुत ही फिट चीज़ है. और व्हाई डोंट वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और टेस्ट मैचेस में इंडिया के टेस्ट मैचेस चल रहे थे इंग्लैंड के साथ में, जो इंडिया जो है वो जीत गया था 6 रन से सिर्फ. मतलब भाई साहब, दैट्स व्हाट हैपन जब आप दो मज़े की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के साथ खेल रही होती हैं, तो वो टेस्ट मैचेस को भी T20s बना देते हैं. मतलब वो टेस्ट मैचेस को भी इतना एक्साइटिंग बना देते हैं कि बंदे को लगता है कि यार मतलब मज़ा ही आ गया. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब आप एक क्लास क्रिकेटर हो और जब आप एक क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, तो उसमें वो वाली चीज़ होती है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ओवर्स का मैच है और कितनी देर का मैच है और क्या है, बस गेम मैटर करती है. एंड या That was a good match. मेरे बच्चों ने मुझे इस बारे में बताया, और वो सारा कि विकेट्स और ये और वो और सारा कुछ. तो वो ऑब्वियसली मुझे इन चीज़ों में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आपको बट आपको सुननी पड़ती है, बिकॉज बच्चों को आपको सुनानी है तो आप वो सुनते हो. तो इसी नोट के साथ मैं सोच रही थी कि आज सियारा के हम थोड़े से गाने जो हैं वो देखते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे और मैंने कोई भी गाना नहीं सुना हुआ. तो आई थॉट कि चलो सियारा के गाने लगाते हैं. और अब दूसरा जो है वो धुन है गाना, आप लोग भी सुनिए, मैं भी सुन रही हूँ, साथ में मिलके एंजॉय करते हैं. ठीक है, सो हियर वी गो अगेन विद सियारा. द सॉन्ग इज धुन, एंड या अरिजीत का है. सो या

find the lyrics very weird. मुझे गाना is fine, but मुझे थोड़े से lyrics अजीब सी लगे. मतलब तेरी एक धुन, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया. मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही words जो हैं उनको अच्छे अच्छे words को अच्छे एक order में लगा कर लगता है कि sense बनने लग जाएगी, but ऐसा नहीं होता. तो मुझे ये वाला गाना थोड़ा सा okay-ish लगा था. अगर आप लोगों की और किस्म की राय है तो आप लोग ऑलरेडी ऑब्वियसली मुझे लिख सकते हैं. रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ प्रोग्राम्स में पाकिनिया एक्सप्रेस को ढूंढिए. जब आप नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो वहाँ पर फीडबैक का कॉलम है. वहाँ पर आप लोग आकर फीडबैक लिख सकते हैं. और अगर आप मेरे पे गुस्से में है कि मैं इतनी देर नहीं आई, तो वो भी आप लिख सकते हैं. मैं आई रिमेम्बर, मुझे मुहर्रम के महीने में मैं बिल्कुल गायब हो गई थी और मैंने वो बिल्कुल भी कोई भी शो नहीं किया. तो आई नो कि That's not how it should be. लेकिन अभी हम आ गए हैं वापस. और क्योंकि पिछले कुछ महीना जो है वो थोड़ा सा awkward सा अजीब सा गुजरा, because मैं अपने बच्चों के साथ बिजी थी, मैं अपने घर में उड़ला ये वो काम, आई एम गोइंग टू चेंज माई जॉब और उसके लिए मैं बिज़ी थी और यहाँ वहाँ सब. उस चक्कर में आप लोग कभी कभार मैं मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जो है वो मेरा टाइम है. तो वो कभी कभार आप इतने परेशान होते हो या फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो. तो मुझे लगता है कि जब मैं रेडियो करने आती हूँ तो मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रही होती हूँ. तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाई पिछले कुछ देर अरसे में. और मुझे लगता है कि अब हम वापस हैं और अब हम कर रहे हैं. उर्दू और लफ्ज़ों को एक तरीके से पिरोने वाला जो टॉपिक है उस पर मैं बात करना चाह रही थी कि अभी आजकल मैं मंटो नहीं हूँ के नाम से ड्रामा चल रहा है और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. मैंने नहीं देखा है लेकिन मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैं जब बचपन में छोटी थी, बचपन में मैं जब कॉलेज जाना शुरू हुई थी तो उस टाइम पर कॉलेज मतलब FSC वाला टाइम था. तो उस टाइम पर मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और बिकॉज मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना मैं आई कैन नॉट डू स्मॉल टॉक्स. तो मैं ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो बना नहीं पाती हूँ. तो इस वजह से मेरे जब कोई फ्रेंड्स नहीं थे नए कॉलेज में जाकर, तो मैं सीधा लाइब्रेरी चली जाती थी. और मुझे किसी ने कहा था एक दफ़ा कि अगर आप देखना चाहते हैं किताब जो है वो अच्छी है या नहीं अच्छी, तो उसके आखिरी चार पेजेस को पढ़ें. तो मैंने इस तरह मंटो को पढ़ना शुरू किया था. तो मेरा जो एक वो होता है ना इंट्रोडक्शन टू मंटो, वो इस तरह से हुआ था कि मैं जाती थी और मैं लाइब्रेरी में जाके मंटो की बुक्स पढ़ती थी एंड द डिटेलिंग ही यूज़ टू डिस्क्राइब. और इस तरह से वो एक वो वाला चीज़ था कि उस ज़माने में इतनी क्लियर बातें डायरेक्ट आके करना बहुत ही अनयूजुअल किस्म की चीज़ थी. और इस वजह से मंटो जो है उनको बाद में बहुत ज़्यादा पज़ीराए मिली. और मुझे ऐसा लगता है कि मंटो जैसे नामों को रिवाइव करते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर वो इंसाइट आए कि यार बहुत साल पहले भी लोग जो हैं उन जो जिनमें शऊर था वो इन चीज़ों के बारे में सोसाइटी के दोगलेपन के बारे में बातें किया करते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पुराने ज़माने की किस्से कहानियाँ पढ़ें तो आपको एक्चुअली कंपैरिजन में पता चलता है कि आप किधर स्टैंड करते हो और वो वक्त कैसे थे. बट इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक और चीज़ पता चलती है कि जो सोसाइटी के मसले हैं वो हमेशा वहीं के वहीं रहते हैं. मतलब पहले हम लोगों की माएँ जो हैं वो कहा करती थी टीवी देखते रहते हैं बैठ के बच्चे सारा टाइम. आपकी माएँ जो हैं, मतलब मैं अपने बच्चों को हर वक्त कह रही होती हूँ मोबाइल छोड़ो, टैबलेट छोड़ो, ये वो सारा कुछ. तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मुद्दे हैं ना वो हमेशा सेम रहते हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो बदलती रहती है थोड़ी बहुत ही. तो मतलब थेमा जो है ना उस चीज़ का एक पॉइंट है वो हमेशा वही रहेगा और हम लोग अंदर का बस कॉन्टेक्स्ट चेंज करते रहते हैं. इसी नोट के साथ एक और लव स्टोरी जो सयारा इज़ अ लव स्टोरी और मुझे मैंने अभी तक देखी नहीं है तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ एंड ऑल दैट, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू वॉच इट. मैं देखूंगी और मैं आप लोगों को फिर फीडबैक जो है फिर वो अगली दफ़ा जब हम शो करेंगे तो फिर करेंगे. अभी हम लगाते हैं इसी सयारा मूवी का ही एक और गाना, दैट वाज बर्बाद. या हाँ, तो ये वाला गाना लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह का है. और आप लोग भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए. और ये फीमेल वर्जन है, आई थिंक सो.

So that was the version जो कि शिल्पा राव ने गाया and because I'm a big शिल्पा राव fan तो I wanted to play it. अभी इसमें हम लोग जो actual वाला version है वो चलाते हैं ठीक है. So that's बर्बाद song. Yeah.

So the song is by Jubin, and it's like almost six minutes long. Like मैंने बड़े अरसे से किसी इंडियन मूवी में इतना लंबा गाना नहीं सुना है. And the song is equally good. It's not that it's not good. It's good. But वो एक होता है ना कि आप बार बार as a someone who's like on radio all the time and all the time playing the songs, you feel like oh my god, मतलब इतना लंबा song इतनी देर में क्या करूँगी. तो मतलब it is a good song. I like the song and the Jubin. I also like Jubin also. अब सीज़न जो है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लव स्टोरीज़ का चल रहा है. तो अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो भी हम एक लव स्टोरी का ही चलाएंगे. लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मैंने पिछले दिनों की. मैंने मूवी देखी थी आप जैसा कोई, जो कि माधवन की और सना शेख की थी. एंड इट वाज अ गुड मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. बट जब भी मूवी कोई कोलकाता के बैकड्रॉप पे होती है या बेस्ड होती है कोलकाता के लोगों पे, वो मूवी में एकदम से मज़ा आ जाता है. मतलब वो उसमें एकदम से स्पाइस और एक ओपन माइंडेडनेस और एक नया प्रोस्पेक्टिव आता है. बिकॉज़ मुझे लगता है कि हम लोग बॉलीवुड जो है उसको देख देख के बंदा बहुत ज़्यादा वो स्टीरियोटिपिकल सोचने लग जाता है और हमें लगता है कि इंडिया वही है जो बॉलीवुड है. बट एक्चुअली जब बॉलीवुड किसी और कल्चर्स के ऊपर वही चीज़ें बनाता है और स्टोरीज़ बनाता है, तो आप लोगों को पता चलता है कि इंडिया जो है वो कितना वर्सेटाइल और इंडिया कितना बड़ा है. और मुझे हमेशा और कोलकाता में देर इज़ लाइक एंडलेस ब्यूटी. वहाँ का कल्चर, वहाँ के कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज़, उठना बैठना, रहन सहन, एवरीथिंग विच इट एडेड एक्स्ट्रा फ्लेवर टू द मूवी एक्चुअली. और माधवन इज़ अ सुपर्ब पर्सन, ही इज़ अ सुपर्ब डांस एक्टर. सो उसके साथ में वो चार चांद लग जाते हैं आपकी स्टोरी में. तो आई रियली इन्जॉयड द स्टोरी. इट वॉज़ लाइक अ गुड वन टाइम वॉच एंड it was not that bad. उसके साथ में K-pop Demon Hunter देखी है मैंने सारा टाइम बैठ के. बच्चों को गाने बहुत पसंद हैं. इसके साथ साथ मैंने अभी तक सरदार जी 3 नहीं देखी है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास चांस था कि मैं म्यूनिक चली जाती और मैं वहाँ पर जाकर देख सकती थी. लेकिन कंफर्म नहीं था कि बच्चों को अंदर जाने देंगे या नहीं, इसलिए मैं गई नहीं. तो इसलिए अभी मैं बहुत सैड हूँ कि मैंने सरदारजी 3 नहीं देखी. कैम मैंने देखा था कहीं पर, लेकिन कैम वाला व्यू तो नहीं देखना चाह रही मैं. मतलब सीरियसली आई डोंट वांट दैट. तो हम वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पायरेटेड वर्जन आ जाएगा जो उतना ख़राब नहीं होगा और फिर हम देख सकेंगे. ऐसे मौक़ों पे कभी कभार पाकिस्तान आपको याद आता है, बिकॉज पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी और पाकिस्तान में सब लोग देख सकते थे. बट बीइंग अ बिग दिलजीत फ़ैन, बिग हानिया फ़ैन, मुझे हानिया एज अ पर्सन ऑन इंस्टाग्राम बहुत फिट लगती है. द वे शी हैंडल्स हर इंस्टाग्राम और हैंडल्स हर पर्सनल लाइफ ऑन इंस्टाग्राम, यू नेवर नो कि वो कैसी है कैसी नहीं. लेकिन जिस तरह से शी हैंडल्स हर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड बहुत ही लाइक वन कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द वे शी केटर्स टू हर सेल्फ और जिस तरह से वो लोगों को प्रेजेंट करती है अपना आप. अगर वो एक्चुअली ऐसी है या नहीं है वो हमें नहीं ऑब्वियसली नहीं पता, बट इंस्टाग्राम की हद तक और एक जो परसोना उसने बना कर रखा है हानिया द एक्टर का, वो बहुत फिट है. इसी तरह दिलजीत का भी जो पर्सोना एज एन एक्टर है वो बहुत फिट है. द वे ही ऑल्सो प्रेजेंट्स हिमसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम इज ऑल्सो लाइक समथिंग एल्स. तो वो वाली एक चीज़ है कि दोनों इतने को फेमस लोग जो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वो उनकी साथ में एक मूवी थी और मुझे बहुत था देखने का, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं. अब जब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में हम एक और मूवी के बारे में बात करते हैं. दैट्स धड़क 2. धड़क 2 जो है, धड़क 1 जो मूवी है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी मूवी जो है वो एवरेज थी. मतलब मुझे उसमें कोई भी इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी. लेकिन उस मूवी का जो आखिरी सीन था वो ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी मूवी उसी आखिरी सीन के लिए बनाई है. मतलब इट वॉज अ नॉर्मल मूवी जो आपने सारी उम्र ज़िंदगी में लव स्टोरीज़ देखी हैं, बट आखिर में आकर ऐसा आपको धचका लगता है कि आपको दिन लग जाते हैं कि आपको नींद नहीं आती और आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं ये मतलब

हम लोग आ गए हैं वापस और हम धड़क का गाना सुन रहे थे. आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, बट या आई डोंट नो. अगर आप टॉर्चर के लिए दोबारा तैयार हैं तो ज़रूर देखने जाइएगा. 1 अगस्त को भी रिलीज़ हुई है. गाने जो हैं वो सारे आजकल इस तरह के ही बन रहे हैं, जैसे वो रोमांटिक मूवीज़ का टाइम स्टार्ट हो गया है. इन दिनों इन मेट्रो भी मुझे अच्छी लग रही थी, वो मैंने अभी तक नहीं देखी है. बट मैं जनरली बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देख रही हूँ आजकल, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है और आपने ये सारी मूवीज़ देखी हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर भेजिएगा. और मुझे अगर आप कोई मूवीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कीजिएगा, बिकॉज अभी मुझे इतना ज़्यादा, मुझे सिर्फ इन्हीं मूवीज़ के बारे में पता है जो मैं अभी आपके साथ, मतलब ये धड़क वगैरह ये मूवीज़ जो है मैं एक्चुअली करती ही हूँ कि जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो जो गाना मुझे पता होता है वो मैं अंदर डालती हूँ, उसके अंदर सर्च करती हूँ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब गाने खुलना शुरू हो जाते हैं. तो फिर मुझे याद आता है, ओ अच्छा हमने इस बारे में बात नहीं की हमें. लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए, और जिन टॉपिक्स के बारे में आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हैं उनके बारे में ज़रूर लिखकर भेजिएगा. मुझे ज़रूर हेल्प चाहिए होएगी आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज़ कभी कभार आप ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि जो चीज़ें आपकी अपनी, जो चीज़ें आपको

खुशी देती हैं उनको आप निगलेक्ट करना शुरू कर देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इतना ज़्यादा बिजी थी अपनी रूटीन में कि मैं अपनी जो रेडियो जो मुझे मेरी ज़िंदगी में एक मकसद लाता है और मुझे खुशी देता है, मैं उसको निगलेक्ट करना शुरू हो गई थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे थीम्स और उस तरह की चीज़ें भेजें जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, नए आइडियाज़। मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं रेडियो में, क्या सुनना चाहते हैं, मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, आप लोग अगर कोई चीज़ जो है वो शेयर करना चाहते हैं उनके बारे में शेयर कर सकते हैं। हम लोग पुराने आर्टिफैक्ट्स और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आई वुड लव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक भेजिएगा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। सो लेट्स जस्ट मेक अ कम्युनिटी जहाँ पर हम एक दूसरे से रबते में रहें और हम एक दूसरे को इनक्रेज कर सकें। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और मेरे साथ बात करना चाहते हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम शोज़ विद मी बिकॉज़ आपके पास कुछ कूल आइडियाज़ हैं, तो उसके लिए भी आई एम वेरी ओपन टू दैट एज वेल। इसी नोट के साथ हम धड़क का अगला गाना सुनते हैं, दैट इज़ दुनिया अलग, और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। और हाँ जी जी हाँ, ये स्टेटस है। सो द सॉन्ग इज़ दुनिया अलग, अरिजीत ने गाया है। और या हियर वी गो।

सो हम लोग आ गए हैं वापस. आप लोग सुन रहे थे, जी हाँ, आप लोग सुन रहे थे गाना धड़क मूवी का ही. और हाँ, सही था. मुझे सही लगा. लेकिन इतना मुझे वही जो मैं कह रही थी, कभी कभार ऐसा मुझे फीलिंग आती है कि सारे अच्छे अच्छे साउंड करने वाले वर्ड्स जो हैं उनको एक साथ जो है वो जमा कर कर कोशिश की जाती है कि एक थोड़ा सा बेहतर गाना बना लिया जाए. तो मुझे उसमें भी यही वाली फीलिंग आई. तो मैं अभी सोच रही थी एक गाना आप जैसा कोई का भी चलाने का, और मैं ढूंढ रही हूँ. अगर मुझे मिल गया तो आई विल पुट इट ऑन. लेकिन देखना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे उन चीज़ों के बारे में जो हम लोग अपने शो के बारे में कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो आप लोगों के लिए मैं कोई कहानी लेकर आऊँ साथ में जो मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुना सकूं. लेकिन जब हम कहानियों की बात करते हैं तो लाइक इन पाकिस्तान में और इंडिया में हम लोगों की इतनी ज़्यादा फोक कहानियाँ हैं और उनके बारे में आप इतनी चीज़ें बता सकते हो. लाइक मेरे गाँव में हमेशा से वो एक बात होती है कि उसके आस पास जो है वो जिन्हें रहा कर जिन चुड़ैल रहा करते थे, और वो पार्टीशन से पहले की बात थी, और उस टाइम पर दरख्तों के ऊपर कोई बैठा होता था और उन्होंने अपने बाल नीचे लटकाए होते थे एंड ऑल दैट. सो इस तरह की कहानी मेरे दादा सुनाया करते थे. इस तरह की अगर कोई इंटरेस्टिंग कहानी आपके इलाकों की है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन अभी इस टाइम पर आई एम इन द फेज लाइक इन द फेज ऑफ लाइफ वे आई नीड आइडियाज़, बिकॉज मैं ये शो जो है वो इतने सालों से कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे द नेक्स्ट साल हम लोगों को 10 साल हो जाएंगे. और मैं चाहती हूँ कि अभी हम थोड़ा सा कुछ चेंज करें, कुछ मज़े की चीज़ करें, कुछ आइडियाज़ हों, बिकॉज इतनी ज़्यादा मूवीज़ मैं देखती नहीं हूँ कि जिनके बारे में रिव्यू कर सकूँ बैठ कर. पाकिस्तान इंडिया के मैचेस चलते रहते हैं. पॉलिटिक्स के बारे में मैं बहुत इमोशनल होकर बातें किया करती थी, जो कि मैंने अब करना छोड़ दी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में ख़राब हालात हैं कि मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाहती. और इसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो तो जो पैलेस्टाइन में सिचुएशन है उसके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दोगलापन है कि आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस टाइम पर हम किस बारे में बात कर सकते हैं. दिन त्यौहार जो है वो अब हमारे ख़त्म हो गए हैं, सफ़र का महीना चल रहा है, लेकिन वो भी अब उसके आगे रबी लवल आ जाएगा. इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आइडियाज़ चाहिए इस टाइम पर, और आई एम रीचिंग आउट टू यू पीपल. तो अगर आपके पास किसी किस्म का कोई भी आइडिया है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट शो जो है वो हम लोगों का अगस्त में होगा, विच इज़ गोइंग टू बी नियर 14 अगस्त. It is going to be on the 19th of August. So 19th of August को हम लोग फिर इस बारे में बातें करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के कुछ चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, लाइक कुछ हिस्ट्री के बारे में और इस तरह की. ऑब्वियसली जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में अलग है, इंडिया में अलग है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल रह सकें और इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर सकें और इंडिपेंडेंस स्पेशल शो टाइप का कुछ कर सकें. पार्टीशन जो है वो मेरे लिए इतना सेंसिटिव टॉपिक हमेशा से इसलिए रहा है बिकॉज मेरे घर वाले जो हैं उन लोगों ने हमेशा मुझे स्टोरीज़ बताई हैं कि वो जब बिकॉज हम लोग एक माइग्रेटेड फैमिली हैं, इससे मेरा ताल्लुक है. तो जब मेरे घर वाले इधर आ रहे थे तो क्या हालात थे और किस तरह से पीपल डाइड, फिर जब वो यहाँ पर आए तो उनको घर लेना, ये वो सारा कुछ, ज़मीनें पीछे छोड़ कर आना. तो इस वजह से चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मैंने हमेशा से सुनी है. अगर इसी तरह के कुछ वाकयात आपकी लाइफ में भी हैं और आपके घर वालों ने भी सुनाए हैं तो वो भी आप मेरे साथ बहुत डिस्कस कर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ फनी कि आप इतनी मुश्किल से एक मुल्क लेते हो जिसमें आप आज़ादी से रहना चाहते हो और उसके बाद वो मुल्क आप छोड़ कर जाते हो बिकॉज आपको वहाँ पर आज़ादी नहीं है, आपको वहाँ पर वो सारे मौके नहीं मिल रहे जिन मौक़ों के प्रॉमिस के साथ एक मुल्क बनाया गया था. इट इज़ सैड कि हमारा मुल्क और हम लोग उस नहज पर आ गए हैं कि हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता रहता है, एज़ वी पुट इट इन द राइट वर्ड्स. तो आई रियली होप कि जब हम बाहर आएँ तो हम अपने मुल्कों को उस तरह से प्रेजेंट कर सकें कि एक अच्छा एक अच्छे नाम से हमें याद किया जाए और सब. मैं हमेशा से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो और इंटरनेशनल रहते हो तो यू आर इंटरनेशनल.
इमोशनल. फिर आपका सांस लेना, उठना, बैठना, गाड़ी किस तरीके से पार्क की है, चल कैसे रहे हो, कपड़े कैसे पहने हैं, वो सब इंटरनेशनल है. तो आप 10 तरह के लोगों से मिलते हो और उनका 10 तरह के लोगों का आपके मुल्क के बारे में, आपके लोगों के बारे में रिव्यू, एक व्यू बनता जाता है. तो आप चलता फिरता अपने मुल्क की रेटिंग हो. तो जो भी आप बाहर के मुल्क में करते हो, आप अपने आप को, लाइक हमारे घर में ये होता है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने अम्मा अब्बा को रिप्रेजेंट करते हो. अब यहाँ पर जब हम बाहर के मुल्क में आ गए हैं तो हम अपने अम्मा अब्बा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम सब के अम्मा अब्बा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो व्हेन यू आर नॉट इन योर कंट्री, यू आर इंटरनेशनल. सो दैट्स द थिंग. तो आपको अपने आप को उस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है कि आप एक अच्छी मिसाल के तौर पर लोगों की जहनों में ताज़ा रहें. इसी नोट के साथ, आप जैसे कोई कि हम गाना चलाते हैं, मुझे इन दिनों मेट्रो का भी कोई गाना चलाना था बट वो नहीं हो सकता. मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो मैंने उस वक्त तक इन दिनों मेट्रो देख ली हो तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन अभी आप सुनिए आप जैसा कोई. और अगर आप लोग सुन रहे, आप लोग सोच रहे हैं आप जैसा कोई देखने के बारे में, तो प्लीज़ देखिएगा. आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे था या प्राइम पे थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बट अगर आप देखने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा. इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग मूवी. ठीक है, तो सुनिए और इंजॉय कीजिए. और मैं आपसे लूँगी विदा. सो नेक्स्ट शो के साथ मिलते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फिर से रेगुलर हूँ. और जहाँ तक मेरा सलाम पहुँचे, आप जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सबको मेरा दुआ, सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलाम वालेकुम, साल्सबर्ग.